आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है, उन्हां आखिया जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नू जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया, राणी किथे जांदी है मैनू दसण तों बगैर। अज दूजा दिन होया, इने सोचिया भई हुण मैं रात नू ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी।

तेरी बाणी विच बड़िया रहमता ने। साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबाणी। अतारा राणी दे उदाहरण देख भाई गुरुदास जी सानू समझाउण दा जतन कर रहे ने। कीर्तन विच बैठेगा ना दुनिया दे दुखां कलेशां तों सतगुरु तैनू आप

रंग न लाए, संता से भी रंग न लाए, साकत संग विकर्म ताकत संग विकर्म कमाए। दुर्लभ देह कोई अज्ञानी उज्जड़ अपनी

gasoline. काहे से मेरे ये शब्द गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने मथा बिंदा बन जदों आप गए ते जाके वेख्या भाई किवें ये पंडित लोग राशन पाउंदे हैं कोई कृष्ण भगवान बनता है कोई ते उना दे नाल ही फिर कुकर्म करदे हैं ते हजूर ने ये शब्द उत्थे उच्चारण किया पर है कहनी प्रधान ने क्योंकि अगे करनी कीरत वाची ऐसा ना हो अवर उपदेश है आप न करे आवत जावत जन्मे मरे लोगों नु रोकदा रहे भाई शराब न पिया करो ते आप पीता होवे लोगों नु कवे कुकर्म ना करया करो आप करता होवे हजूर कहंदे ऐसा मनुख कदे अपना जीवन सफल नहीं कर सकता अपने मनोरथ विच कदे कामयाब नहीं हो सकता उच्चारण करो तेरी वाहे वो फिर क्या सिकटारा पवे जंगीरी तो चाकर हथों मरना सुली मारिया गया सी ना किते अहंकार नाल फौजा लैके आ रहे है गुरु अर्जन देव पातशाह जी मारन ले गुरु नानक दे दर दे नाल शुरू तो ही क्योंकि इतने हिंदू मुसलमान किसी भी मत का जो भी आंदा है उसन रहन लई खां मिलती है शकन लई लंगर मिलता है ते फिर सिर्फ शरीरक लंगर ही नहीं बाबे दे घर कीर्तन का भी लंगर चलता है घर कीर्तन होए उधार ते जदों कीर्तन का लंगर छक के उठता है मनुख ते फिर कड़ा प्रसाद की देख दर मिल जाती है उच्चारण करो तेरी भाई ते गुरु नानक दे दर की दिनों दिन वध्याई ये झूठी सता वाले कभी भी नहीं सह सके हम भी थां थां ते जितनी भी धरती है सारे वर्ल्ड में जिथे कोई एक भी सिख बैठा है ना सात संगत उसने गुरुद्वारा पहला बनाया है अपना घर बाद में बनाया है चार्ज करो श्री भाई गुरसिखा भी ऐसे ही आए और हर गुरुद्वारे में फिर गुरु का लंगर कीर्तन ते आए स्थिति नूं थां मिलती इस दादी वडियाई नूं जहांगीर वेख नहीं सकिया ते सुली खान नूं कह दिता भाई तू कश्मीर जा रहे हैं जंग करन लई रस्ते विच गुरु नूं ही सोधदा जावीं ते जदों हजूर दे पास ए सुनेहा पहुंचिया विचार होई प्रथमे मता जे पत्री चलावो दुतीये मता दोए मानक पहुंचावो किसी ने आख्या महाराज पत्रिका लिख दई ते जे बादशाह जहांगीर नूं पत्रिका नहीं लिखनी तां दो सियाणे पुरश भेज दईए जो गुरु नानक दे दर दी वडियाई दस सकन ते जे ए वी नहीं करना तां फिर हुकम करो असीं जूझ जांदे हां तृतीय मता किश करो उपाया और शांत मुहूर्त गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुज बाणी दे बोहित शहीदों के सिरताज दाता जी जुड़ गए अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में ते आप कहते हो मैं सब किश छोड़ एक बार जपो ना मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही दे आया अच्छा मैं इन कपटियां जाके कह भाई मैं कुछ ना आख ये दुनियादार राजेशी मुकदम कुत्ते इन्हां नूं जाके आखा नहीं मैं अपने परमेश्वर अगे अरदास करनी है ते जिन्हां ने परमेश्वर का आसरा लिया है ना इतिहास विच आउंदा है भाई सुली खां बड़े हंकार नाल फौजां चढ़ा के आ रहा सी इसका घोड़ा ऐसा पागल होया बंदे पट्ठे विच जा वड़िया ते सुली समेत सुहा हो गया सुली ते नारायण राख सुन ही का हाथ कहीं ना पहुंचे सुन ही होए हुआ ना पाक मुसलमान सर के मर जावे ना कहें ये दोजख विच गया नरका विच गया काज कुठार खसम से काटिया काज कुठार खसम से काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचिया याद रखना गुरु नानक दे दर नूं गुरु नानक के दर लई जिसने मंदा चितवे ना सात संगत वो कदे रहा नहीं है
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਖਲ ਗਿਆ। ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿੰਨ ਬੀਨਾ ਧਾਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਧਨ ਕਛੂ ਨ ਰਹੇ ਉਸ ਛੋਦ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਸਿੱਖਦਾਰ ਹੈ ਪਵੇ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾਂ ਜਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਆਪ ਸਾਰੇ

नाम जपन वाले अभी पीछे भी शोभा, हूं भी शोभा हो रही है, तेरे दी दुनिया तक शोभा होती रही। जिन हर मन वसिया से दर साचे सचियारा, उना दी शोभा सारे जगो न उना दी शोभा, जुग जुग होई कोई न मेटन हारा। जिन्हा ने नाम का आसरा लिया, अपने धर्म लई आपा कुर्बान कर दिता, फिर उन्हां नूं कोई मेट सकदा कोई ना मेटन हारा। ते माया की शोभा अज मुरातबा है, अज चार पैसे हन तो लोग तैनू सलामा कर रहे हैं, कल जदों नहीं रहेंगे तैनू कोई मुंह ही नहीं लावेगा। ते जे पदार्थ सदा लई तेरे पास रह भी गए, कोई मुरातबा तेरे पास रह भी गया, तो तू कितना कुछ चिर बैठा रहेगा भाई, आखिर तो जाना ही है। चाहे बेमुख होके जावे ते चाहे गुरु वाला बन के जावे, जो गुरु वाले बन के जाते हैं उन्हों का मुख इथे भी उजला ते दरगाह विच भी उजला, ते जेड़ा बेमुख होके मरदा तिना मुख डरावने जिना विचारे नाओ, इथे दुख घनेरिया अगे थो न था। गुरु तो बेमुख होके पहला तो तू अपना मनुष्य जन्म ही नरक बना लिया, ते अगे जाके तू भी नरक फिर गया है। विचार भी करो श्री भाई भाई साहब गुरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखे है, पारी हुई अकीर्त खन मंदी हूं मंदी, धरती ने पुकार कीती है निरंकार में बड़ी दुखी है। आवाज आई तेनू किस गल का दुख है, जे पहाड़ा का पार है तो चुक लेना हा, जे बनस्पति का पार है तो बनस्पति चुक लेना हा, नदियां दरियावां का पार है वो उठा लेना हा, जीव जंतुओं का पार है वो चुक लेना हा, तेनू किस गल का पार है। धरती ने पुकार कीती जदों अकीर्त खन मेरे ते कदम रखदा है, मैं सड़ जाती हूं मेरी छाती सड़ जाती है। अकीर्त खन कौन है, जो दाता तक गुरु को प्राप्त करे ते फिर उसे दर से खून बहावे, उसे दर से खून दियां नदियां बहे, उस पवित्र स्थान की बेदबी होवे जिथों की चरण धूरी ब्रह्मा बिचन महेश 33 करोड़ देवते तीर पैगंबर औलिया, जिस दर की चरण धूरी मस्तक से ला के अपने तन पाद समझते हो, उस दर की बेदबी हो रही हो। वड़ा होर केड़ा पाप है भाई, होर केड़ी अकिरत घनता है। इसलिए फिर जहां सिकदार है पवे जंजीरी ता चाकर हथों मर, वड़ा होवा दुनीदार सारे जपो, वड़ा होवा दुनीदार गल संगल खत चलाए खत, अगे करनी कीरत वाचिए बैलेखा कर समझाया, थाओ ना होवी पौंदी हुण सुनिया कह रवाया। जदों वही दरगाह विच जाके मुंह विखावेगा फिर उथे तेरी कोई कूक पुकार सुनेगा, उथे किसे नहीं सुनी, हुण सुनिया कह रवाया, ते फिर उपरों पवेगी मार जमा दी, ते आवाज आवेगी मन अंधे जन्म गवाया, तू जन्म गवा दिता है।

और निके निके बतिया में पटलौल पा के इशारे देता गया। मनुखता जल्दी रोई पर किसी ने दया नहीं की। पत्थर दे पुजारी सन पत्थर हो चुके सन, पत्थर दे अखा में कदी आंसू नहीं आंदा सावन, पावे सारा जगत का ही खून बह जाए। पुजारन करो तेरी वाले सारी प्रकृति तरह तेरी होगी, कुदरत रो रही होगी। जदों बेगुनाह मारिया जा रहा सी पर ए पत्थर पत्थर दे इंसान, इन्हों अखा में आंसू नहीं आए। उजारन करो तेरी वाले एक नहीं सिमरन भजन, दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। आ दुनिया ते राज करने वाले आ, जे तेरी हाथ में कलम है तो तेरे पीछे भी कोई खड़ोता है। जे तू रहम की कलम वाहेगा तेरे ते भी वो रहम की कलम वाहेगा, ते जे तू जुलम की कलम वाहेगा तो तेरे पीछे भी कोई खड़ोता है। इसलिए जहां सिकदार है पवे जंजीरी, चाकर दत्तों मरना।

अपने काल भाग समझ जे गुरु के मालिक से चलते हो तेरा सिर भी लग गया शुकराना हे वाहेगुरु मेरी सिखी केसा सुसा नाल लग गई है क्योंकि उदो ही तू बन गए सिख का तो जो जन्म होंदा है उदो ही गुरु की बेटा चढ़ जाता है क्यों का होया मथा क्यों टेकते हैं रोज गुरु अगे ये कोई माया का पेटा नहीं हो सकती घटो घट सिर ही पेटा हो सकता है गुरु मथा क्यों टेकते हैं हे भाई गुरु हे कलगी दर पातशाह ये सिर तेरा है ते तेरा ही रहेगा इसलिए नानक नाम मिले वडियाई ए तू ऊपर कर्म नहीं आओ सारे गुरु के बनी अमृत छकिए गुरु की मोर लगवाई क्योंकि कई बार मनुख कह देता है भाई मैं सारे ही चंगे कर्म करता हां ते मैनू अमृत छकन की लोड़ है शायद कलगी दर पातशाह जी का वचन याद आया एक ब्राह्मण ने हजूर अगे प्रश्न कर दिता आखिया जे तुहाडे सिख ब्रह्म ज्ञानी हैं जीवन मुक्त हैं तो फिर ए कंगा किरपान कड़ा केश ये पांच ककार फिर तुसी क्यों रखाउंदे हो इन्हां दी की लोड़ है जिहड़ा है ही ब्रह्म ज्ञानी है ही जीवन मुक्त कलगी दर पातशाह कहन लगे भाई कल तैनू इस गल का जवाब देवांगे दूसरा दिन होया काबल तो संगतां आईयां हजूर के पेटावां रखियां एक सिख ने सोने की गली हजूर के मत्था टेकी क्योंकि हजूर के पीर अगे सवा तोला सोना लगदा सी ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने वो डली चुक के अपने कमर कसे विच राखी सारिया ने वेख्या आख्या सिख किदे भागां वाला जिदी बेटा नूं हजूर ने अपने हस्त कवना नाल अपने कमर कसे विच रख्या ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहन लगे भाई इस संगत विच कोई सुनियार बैठा है तां इस सोने की परख कर बैठा सी कहन लगा गरीब निवाज एडे सिदकी सिख जिसने ये सोना भेट किया ते कोई गलत चीज थोड़ी थोड़ी भेटा कर सकता है फिर तुहाडे जिस वस्तु नूं हाथ लग जाण जिहड़ी वस्तु तुहाडे शरीर नाल छो जावे वो तो उस तरह भी खंचन हो जाती है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहन लगे भाई जो मैं कह रहा ना उस गल की तामील करो ये सोना वेखो भाई ये असल सोना है या मिलावट वाला है ध्यान देना आख्या जी फिर ये तो कसवटी ते ला के ही पता लग सकता कसवटी लियाया सुनियार ने पांच सत लकीर खिंचिया वेख्या रंगत वेखी आख्या गरीब निवाज सच्चे पातशाह ये सौ लंबरी सोना है ये कोई खोट नहीं है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ब्राह्मण नूं कहन लगे भाई तेरे सवाल का जवाब तेनू मिल गए आख्या जी मैनू समझ नहीं आई आख्या बेशक सोना सौ लंबरी सी पर जितने तक कसवटी ते नहीं ना लग जाता कोई भी सियाणा सराप उसनू अपनी तिजोरी विच नहीं रखदा ते गुरु दे ग्रह विखे भी भाई इस खजाने विच भी ओही दाखल हो सकदा है जिहड़ा कसवटी ते लगे ते कसवटी की है गुरु का अमृत पान करना जिहड़ा अमृत नहीं छकदा ने गुरु क्या है नाउ बुरा विच हौ मैं कर्म कमाऊं दे जो वेसवा पूत ना नाउ निगुरा पुरुष जिथे कदम रखदा धरती सड़ जांदी है इसलिए भाई आओ गुण लोड़ है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी अपावां हर वेले पलक रही हैं भाई केड़ा मेरा है ते केड़ा पदार्थों में रुड़ गया इस वेले परीक्षा का समा आ गया गुरु नानक सच्चे पातशाह जी वेले एक नित्रया सी जदों पदार्थों दियां नदियां वगियां पदार्थों वाले पदार्थ लैके तुर गए सोने चांदी के व्यापारी सोना चांदी चुक के तुर गए हीरे मोतियां दे बुक भर के लोग तुर गए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जदों मगर वेख्या तो एक भाई लहना खड़ता आख्या तू ही चला जाना ऐसे पदार्थ रस्ते विच आए
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ ਉਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਲਹਿਣੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲਗਾ, ਲਹਿਣੇ ਕੋ ਅੰਗਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ

गुरु की संगत आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कार योग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवन करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए कीर्तन।

गुरुद्वारा होए साहेब संभाले साहेब सदा हजूर है समके छोड़ कट के अंतर जोत करे।

इको ही मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पा

के बादशाह पिठ हो रही है हुण इथों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गादर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पा

सच्चे पातशाह चुक चुक जा रहे सात सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना फल लगता है टैणी नू ओ टैणी उतनी चुकदी चली जानी है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा की गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए सत।

तो कवि साडे पंथ प्रसिद्ध कवि बालम जी होए ने, करम सिंह जी बालम, उन्होंने लिखिया ध्यान देना, आप जी नूं आनंद आएगा। वो दसते ने कि सुनो बादशाह, कुछ सिंगन की सुनाऊं बात, अल्लाह की कसम और कांपती जबान है। कहिंदा सुनो बादशाह, कुछ सिंगन की सुनाऊं बात, अल्लाह की कसम और कांपती जबान है। कहिंदा छे छे फुट लंबे, हाथ नेजे जैसे खंबे, तक मौत तां को कंबे, सिंह काल के समान है। कहिंदा मोटी मोटी मूछे, सिंह दे कहिंदे बड़िया बड़िया मोटिया मूछा ने, नेत्र बड़े लाल है। कहिंदा मोटी मोटी मूछे, नेत्र है लाल जाके, नारा जब मारे तब निकलते प्राण है। नारा केड़ा है? सत श्रीकाल दा जकारा। जदों सिंह सत श्रीकाल दे जकारे छड़दे हन रण मैदान विच, ते ओ बयान करदे ने कि नारा जब मारे सिंह काल के समान है, मोटी मोटी मूछे, नेत्र है लाल जाके, नारा जब मारे तब निकलते प्राण है। हाय मेरे अल्लाह, सिंह करे जब हल्ला, मच जाए तरथला, मोको कसम कुरान है। कुरान दी कहिंदा कसम है कि जदो सिंह सत श्रीकाल दा जकारा बुला के हल्ला करता है, खंडा फेरता है, तो जान निकल जाती है। तो साध सिंह जी आओ बड़े प्यार दे नाल, हुण इस खालसे का जकारा जो है वो चढ़दी कला का प्रतीक है, तो बड़े प्यार दे नाल उच्ची आवाज विच, बुलंद आवाज विच आप जी ने जकारे का उत्तर देना है। आओ बड़े प्यार नाल शरण करो।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन कर रहे हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे हैं।

अंतिम पातशाह गुरु अर्जन देव जी फरमान कर दे हैं। सासत सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे, खटकर माते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज

शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरो न डरो अरस्यो जब जायल निश्चय कर अपनी जीत अरसे को अपने ही मन को ए लाल चहु गुण जब आपकी औ निदान बने अत हिरन में।